जो किछ है सो तेरा। कदों झोलियां भरदियां ने जदों एडी निम्रता ते एडा प्यार आ जावे। महाराजा रणजीत सिंह किन्ना सत्कार गुरु दा करदे ने, अपने घर दे विच सब तो उच्चा स्थान गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दा। जदों भी अपने महलां विच आंदे ते सब तो पहला गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दे दर्शन करदे ते फिर अपने बच्चियां नूं

दिन अपने बाप नू तके मार के बाहर कट देता। तू मेरा प्यो नहीं, तू मेरा दुश्मन है। नौ भी किड्डे बोल कबोल बोल दी है। एडिया एडिया उचिया कोठिया ते बड़िया बड़िया कारा खलोतिया ने, ते ए सेठ गेटा दे बार बैठा प्रसादे तो भी मोहताज है। आज पुत्र जिनू एडिया मनता नाल मनिया सी, एक प्रसादा भी देण नू तैयार ने। बाबा नंद सिंह जी नानक सर वाले अज इस नगरी विच आए। बाबा जी दी सोभा सुनी ते दीवान लगा होया है। समाप्ति होई ते जाके बाबा जी दे चरण पकड़ ले। बाबा जी मेरे कोलों केड़ियां भुला होया ने, जेड़े पुत्र नू एडियां मनता मन के लिया सी उन्हें धक्के मार के कढ़ दिता है। नौ बोल कबोल बोल दी है। आ जदों अपनी मां नू बच्चे माड़े बोल बोलते ने ते मेरे तो सुनिया नहीं जाता। किड़ा गुनाह कीता है, किड़े जन्म दी सजा भुगत रहा हां। बाबा जी आखन लगे हुए सेठ ऐसे ही जन्म दी भुगतदा पिया। एक गल दस, पुत्र मंगिया गुरु नानक दे दरबार विचों ते खुशियां किहदे नाल मनाईयां सी? अपनी खुशी विच गुरु नानक नू बुलाया सी? शराबां ते कबाबां दे नाल तू दोस्तां नू मित्रां नू खुश कर सकदा है, गुरु नानक नू खुश नहीं कर सकदा। जिन्ना चिर गुरु नानक नू खुश नहीं करेगा, उन्ना चिर तेरियां खुशियां कच्चियां ही रह जाणगियां, तेरियां खुशियां पक्कियां नहीं होंगियां। तू गुरु नानक नू भुला दिता। बाबा जी दे चरण पकड़ के हंजू केरे, बाबा जी सच ही मैं बड़े गुनाह कीते ने, देण वाले नू भुला दिता है। ते बाबा जी कहिंदे, सो क्यों विसरे जिन सब किछ दिया। दोस्त मित्र रिश्तेदार तेनू खुशी वेले सारे याद रह गए, ते गुरु ग्रंथ साहिब महाराज तेनू भुले गया। कदी गुरुद्वारे चक्कर मारिया है, कदी संगत विच गया है, दुख वेले किड़े गेड़े मारदा सी। हंजू केरे, बाबा जी मैनू बख्श देव। ते बाबा जी ने सारी संगत नू बिने कीती भी सारे रल के अरदास करो, इस सेठ दी झोली सुख पै जान। ते संगत अरदास कर देवे, क्यों ना खुशियां आ जान। सेवकां नू भेज के इस दे पुत्र ते नूह नू भी बुलाया। बाबा जी ने किन्ना चिर इन्हां नू सिख्या दिती। आखण लगे, बच्चिओ मां ते प्यो रब रूप हुंदे ने। जेड़े माता पिता दी सेवा नहीं करदे उन्हां नाल रब रुस जांदा है। तू अज अपने बापू नू धक्के मारदा है ते कल नू तेरे पुत्र तेनू धक्के मारनगे। इंज चंगा नहीं, बाप दी सेवा करया कर। आ बाबा जी बचन कर देन ते कौन मोड़ सकदा है। आ सतसंगियो, परी संगत दे विच अपने बापू दे चरण पकड़ ले। नहीं बे, देन वाले नू कदे नहीं पलाना। सब कुछ उसदा दिता होया है, सारियां रहमतां उसदियां दित्तियां होईयां ने। ते साडा किड़ा चंद्रा सवा है। आपां जांदे हां ना गुरु ग्रंथ साहिब जी दी हजूरी, ते नमस्कार करन वास्ते जदों अपना पर्स कढ़दे हां, सब तों पहलां तकदे हां बई फटिया नोट केड़ा है। जे फटिया नहीं ते सब तों छोटा नोट केड़ा है। बेशक गुरु साडे पैसे दा भुखा नहीं, पर गुरमुखा ओ प्यार दा भुखा है। तेरा किहो जिहा प्यार है, गुरु लई छोटे ते फटे नोट टोलदा है। नहीं बई, सारा कुछ उसदा दिता होया है। कदों खुशियां आउणियां ने,
जदों सचमुच ही अंदरों आखेंगा सतगुरु मेरा मुझ में किछ नहीं जो किछ है।

तेरा है, मेरा खुद नहीं। आपा तकिया है साडा किहो जिहा सुभा है, घर विच गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का प्रकाश भी है, ते उसे घर दे विच शराबां ते कबाबां भी है। नहीं बई, तू गुरु की नरादरी करदा है, सारा कुछ देण वाला ते ओ है। अपने कमरे वड्डे वड्डे, अपने कमरे विच सोहणे गलीचे ते वड्डे कमरे, ते गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश पौड़ियां थले छोटे छोटे कमरे विच कर देता है। बाबा ईसर सिंह जी नानक सर वाले बख्शिश करदे सन, ये सचमुच गुरु नानक है, कोई मेरिया अखां नाल तक लवे, साडियां नजरां विच फर्क है। जे ये कुछ करदे हां प्रगट गुरां की देह करके नहीं मनदे। ओए गुरु सिखा, खुशियां ते तेरे मग

तेरे घर दे अगे गुरु ग्रंथ साहिब जी दी सवारी लंघनी है। ते बाबा जी कहिंदे सन सारी गली विच झाड़ू ला दे, लोकां नूं पता लग जावे कि अज इस दे मालक ने लंघना है, अज इस दे गुरु ने लंघना है। एवें उपरों उपरों आखी जांदा है वे सारा कुछ तेरा है। आ संसार विच तको घरां विच कोई समागम है ना, ते जदों बाजार कपड़े लैण जांदे हां अपने वास्ते हजारां रुपईयां दे कोट पेंट, ते गुरु वास्ते ये दुकानदार नूं की आखदा है भी कोई 51 रुपईयां दा रुमाला गुरु वास्ते दे दे। ओए गुरसिखा की तेरी भावना नूं होया है, जिन्हें तेनूं सारा कुछ दिता उहदे बदले जदों तूं रुमाला वस्त्र खरीदने ने उदों क्यों जेब कुटदा है, उदों क्यों सरफे ते उतर आया है। नहीं बे, दिलों आख मनो आख सतगुरु सारा कुछ तेरा है, मेरा इस विच

काहे रे मन चितवह उद्दम जा हर हर जियो परया सैल पत्थर मह जंत उपाय ताका रिजक आगे कर तरिया मेरे माधो जी सत संगत मिले सो तरिया गुर प्रसाद परम पद पाया सूके काष्ट हरिया रहाओ जनन पिता लोक सुत बनिता कोय न किसकी तरिया सिर सिर रिजक संबाहे ठाकुर काहे मन पाव करिया ऊड़े ऊड़ा वैसे कोसा तिस पाछे बचरे शरिया तिन कवन खुलावै कवन चुगावै मन में है।

हारे अनिक अनेक अनंता तेरी अनिक करह हर पूजा जी तप तपह जपह बेअंता तेरे अनेक पढ़ह बहु सिमृत शास्त्र जी कर क्रिया खट कर्म करंता से भगत भले।

मोर अच्छा निज कर दय करिए, सब बैरन को आज संघरिए। पूर्ण होए हमारी आशा, तोर भजन की रहे प्यासा। तुम्हें है छाड़ कोई अवर न त्याऊं, जो बर चाहो सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारिय है, चुन चुन सत्र हमारे मारिया है। आप हाथ दय मुझे उबरिया, मरण काल का त्रास निवरिया। हूँ जो सदा हमारे पच्छा, श्रियास्तु जो करी और अच्छा।

जब उत्कर्ख करा करतारा प्रजा तरत तब देहे अपारा जब अकर्ख करत हो कब हूँ तुम मैं मिलत देहे तर सब हूँ जेते बदन सृष्ट सब धारै आप अपनी बूझ उचारै तुम सब ही ते रहत निरालम जानत भेद भेद अर आलम।

कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूर्ण सुब्राता, किल बिख सगल देह को हरता, दुष्ट दोखियन को शय करता, श्री अस्तुज जप भय दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला, मन बांछत फल पावै सोई, दुख न तिसै व्याप्त कोई अड़ेला, सुनै गुंग जो याही सुरस न पावई, सुनै मूढ़ चित लाई चतुरता आवई, दुख दर्द पौ निकट न तिन नर की रहै है।

राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर तम पाया सहज सेती मन वजिया वाधाइया राग रतन परवार परिया शब्द गावण आइया शब्दोता गावो हरि केरा मन जनी वसाया ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਵਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰਨਾਲੇ

सुन कै जम के दूत नाय तिरे छट जाहे। भौजल बिखम असगा हो गुरसबदी पार पाहे। जिनको लगी प्यास अमृत से ही खाहे। कल मैं एहो पुन गुण गोविंद गाहे। सबसे नू कृपाल सुमाले साहे साहे। बिरथा कोई न जाए जे आवे तुद आहे। श्लोक महला पंजवा। अंतर गुर आराधना जिहवा जाप गुरनाओ। नेत्री सतगुर पेखना श्रवणी सुनना गुरनाओ। सतगुर सेती रतिया दरगह है पाइए ठाओ। कहु नानक कृपा करे जिसनु एह वथ दे। जग में है उत्तम काढ़िए है बिरले के महला पंजवा। रखे रखन हार आप उबारियन गुर की पैरी पाए। काज सवारियन हुआ आप दयाल मनहुना विसारियन। साध जना कै संग भवजल तारियन। साकत निंदक दुष्ट खिन माहि बिदारियन। तिस साहिब की टेक नानक मनै माहे। जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाए। तिस साहिब की टेक नानक मनै माहे। जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाए।

0: भाइये सार के संग
1: ये मार के कने जाय न कुसा ये पेड़े बंद गुबारा
0: अरका नाम संग जियारा
1: जय पंत त्रको न सुमनु
0: अरका नाम दे नाल पछान
1: जय मां बयान तब तुबो काम
0: अरके नाम भी तुम ऊपर शाम
1: जय त्रिकम तो जा कर के
0: जय नानक हरा रमण द्वार के
1: भजना की बर्तन नाम
0: संत जना के मन विश्राम
1: अरका नाम दास की ओट
0: अरके नाम उतरे जन कोट
1: जस करत संत दिन रात
0: हरा रोग साधक मात
1: जन के हर नाम निदान
0: पार ब्रह्म जन की नोदान
1: मंत्र रंग रते रंगे कर
0: हरका
1: नाम जन को मुक्त जुगत
0: हरके नाम जन को तृप्त
1: हरका नाम जन का रूप रंग।

जीवात्मा मध्य डरे। नानक कोट मध्य को ऐसा पर्स विजन की माया दे हुए पिन तिस्वैस मुखा निर्मल धर्म केवल भक्ति में संग्राचे साहु परो बदके पाल नानको वैसो प्रंगर पावे सगत्याग दुष्का संग सर्पुर्जय सगर पार ब्रह्म तिस्वो अति कीमत उत्तम होवे मंदा नर्पे विश्र प्रीत नानक सबको अति कीमत को पावे राम नाम आत्म में सुते उस पंडित के उपदेश जग जीवे।

0: राजे रसभोगी कई कोट पात्र निपटाए कई कोट देश भूमंडल कई कोट देव दान में दिन सचर
1: नान जिस भारत जिस सारे
0: कई कोट वेद प्राण समझ सास कई को नाना प्रकार जात कई को गिरी में सुनती है कई को भूत प्रेत सुगम निवास नान का पर क्रिया भरूर कई को नसुर निवासी कई को भोजन निकरे कई को कार्य कपाए कई को माया में चिंतन नान सब प्रभु आते हैं।

0: अवसंग
1: चंचल मार गोविंद
0: रे बाप पी अरविंद
1: हर धर्म सर्वण हर कथा
0: हर गे नानक जन्मता
1: भागी ते जन जग माहे
0: सदा सदा हर के गुण गाए

0: बतावे
1: सो सांसे
0: प्रभु अपना कृपा करे
1: डरे
0: ऐसा साथ ऐसा दिष्टाया
1: अपने कार्य में आप समाया
0: सोदत सोदत सोदत सीजिया जब देखो तब सब किच मूल किच जन्मे न किच मरे
1: आपन चलत आप ही करे
0: आवण जावन दृष्टान दृष्ट
1: आज्ञाकारी तारी सब श्रेष्ठ
0: आप सकल में आप
1: नित युगर ताप ताप
0: नासी नाही किच खंड
1: तार तार ब्रह्मांड
0: अलग पे पुरख प्रताप
1: आप जपाए धन आनंद जाप
0: जिन प्रभ जाता सो सो पापांत
1: सब संसार उतरे दिन मंत
0: आपके सेवक सगल उदार
1: आपके

अविनाशी प्रभा पे आप ये सब प्राणी लोचे गोए गत नानक जपे कर नाम प्रभु जो सगल घर सोए जा सबके तिजका दिया दरवे प्रभु गला बिना कहता वे ते दिन आ जाने का वार नानु सोचन तरा रोग तेरु गुरु का शब्द मने अस्तमन प्राणी गुरजन लक्त निस्तरे सुदर्शन एक मन हुए विलास ते साधु संग में ज्योत प्रगटावे नानक हियर नो जापूर कुरबली रेखा लिखा पाई है अवर त्याग तू दिसे सुधार

0: करे ना ही कित कोई
1: सनंतरे कोजोए
0: आपे बिना आपे दाना
1: जग मीर दुई सुजाना
0: पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद
1: दान दयाल भूषण
0: सात रे की चरनी।

0: नाना जाके रंग
1: नाना बिखरै रंग
0: नाना मतिनो विस्तार
1: नाना सिय कंकर
0: नाना चरत करे किनमाए
1: रोयो गुरु सब काए
0: नाना मितगर बंत बनाए
1: निकी मता बे पाई
0: सब कर तिसके सब तिसके ठाओ
1: जो जीवे नानक करनाओ
0: नाम के तारे सगले जंत
1: के तारे कण ब्रह्मंड
0: नाम के तारे सिमरत वेद पुराण
1: नाम के तारे सुन ज्ञान ध्यान
0: नाम के तारे आकाश पाताल
1: नाम के तारे सगला आकार
0: नाम के तारे पुरिया सब पवन
1: के समुद्र संसोन
0: कर कृपा जिस अपने नाम लाए
1: चौथे पद्म सोचन कर पाए
0: रूप सत जाका सत स्थान
1: सत्य प्रदान
0: कटूत सत सत जाकी वाणी
1: समय समाणी
0: सत कर्म जाकी रचना सत
1: सत सत उत्पत
0: सत करनी निर्मल निर्मली
1: सब जाय दशा सफली
0: सत नाम प्रभु का सुखदाई
1: सत नाम गुरते पाए
0: सत वचन साधु उपदेश
1: सत जन जाकर दे प्रवेश
0: सत ने दूजे जय कोए
1: आज पत्य अभी कित होए
0: आप सत किया सब सत
1: बेजाने अपनी मित कत
0: जिसकी श्रेष्ठ करने हार
1: न बूझ कर विचार
0: काटे की मित न जाने किया
1: न जो दिस भाव सोर किया
0: विस्मन विस्म पे विस्माद
1: इनको जाते साय स्वाद
0: रब के रंग राज जन रहे
1: वचन पदार्थ ले
0: कोई दाते दुख काटन हार
1: संसार
0: जन का सेवक सो बट पागे

0: कर्तृपादेवोऽर्नाम वार्ब्राह्मिस्तब्धापूर्व सासात्प्रक्तिमेद्यावो वक्तुरुप्रक्तिमेद्यीत नानकमांगेनाप्राप्साल अरस्पावेबर्लापुए पूर्वर्पोर्पलुन्दादाने
1: नाम तो दामन पर

भूत पर बताई जाके मन से अनुकार अंदर बुले बुले कर नाम का पर्व पर मिले गुरुदा उत्तर पर नंद दुर्लभ ने करो दार प्राण का है स्वाव मिटे आंधी से अंधेरा राम नाम करतार जिस मन सते सात विद्या दूत का मन दे बचाए करके निभे के तुम्हारी नान बहना जाए गुरे रखना आए प्रभु कृपा ते प्राणी छुटे सफल संतर रूप

द्युत्रचन्द स्वकृष्णाति कुर्वन्मङ्ग स्वसंयोगं साकर्तरो ज्ञानगुरुपुरे नमस्कार स्वसंकल्प परमानन्द गुरु गोविन्द मे तपस्वीव एक रूप जाके रंग अनेक भंजन पूर्ण कृपाल नानक जी का आधार लिखलाज ले रतन आत्र लोक अनुसार जाके मन लगा रंग जय नानक रतन के साथे कृपा प्रभाव मिलाए अमृत नाम सा संग लेना गुरु सेव की सेवा राम नाम सुमर कहते नानक निवी के कुमारी साधवान का चित जिस मन से सोत निदान प्रधान पुरुष पुरुष सोलोए और ना हो या अनजान नानक से प्राप्त हुए स्नान।

0: देवना सत्पेण परावरा परंग तान प्रीत लड़ाई त्रयों से तो सुख शक्ति मत बीत चलेरा राज की नाना चला मती बीत सटका दे दो जीव दे सटका दे दो जीव दे जो तो आज उठाए सरकार बनतिया करज गुरु परमाय संजोग गुरु चटिया कच्चे दुख सम दिया के दी कर दवटिया
1: होवे सिर दुख सम दे नूर अरसो करसो चटिए
0: मिटे सच्चे बात सावन जन्म जन्म दी कटिया
1: सच्चे गुरु परमाय क्यों इदो बोलू हटिए
0: हरि को न पालियो कर बिरो कन रटिया
1: छोटे आकी फिर बन पर अचार छटिए
0: इनतो की सोई करे दिन बीते दिन दटिया
1: कौन हारे के न
0: वटिए कौन हारे के न वटिए
1: ਜਿਸ
0: ਸੁਹਾਤ ਨਾ ਲੱਭੀ ਤੂੰ ਟੂਰ
1: ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ

0: जब लो नहीं भाग लीला रुदै तब लो परम ते फिरते बहुत आयो कल कोर समुद्र मैं बूढ़ थे कबू मिट है नहीं रे पछतायो तात विचार जह मथुरा जग तारण को अवतार बनायो जप्यो जिन अर्जुन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ नायो तात विचार जह मथुरा जग तारण को अवतार बनायो जप्यो जिन अर्जुन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ नायो
1: कल समुद्र पय रूप प्रगट हर नाम उदाहरण बसे संत जिस हृदय दुख दारिद्र निवारण निर्मल पेख अपार तास बिन अवर न कोई मन बच जिन जानयो पयो तह सम सरसोई तरन गगन नव खंड में ज्योत स्वरूपी रहो पर पनमत रा कछ भेद नहीं गुर अर्जन प्रतख हर तरन गगन नव खंड में है ज्योत स्वरूपी रहो पर पन मथुरा कछ भेद नहीं गुर अर्जन पर तख हर
2: वाहे गुरु जी अजय गंग जल अटल सिख संगत सब नावे नित पुराण बाचिए वेद ब्रह्मा मुख गावे अजय चवर सिर टुले नाम अमृत मुख लियो गुरु अर्जन सिर छतर आ परमेश्वर दियो मिल नानक अंगद अमर गुर गुर रामदास हर पै गयो हर वंश जगत जस संचर्यो सो कवन कहे श्री गुरु मोयो मिल नानक अंगद अमर गुर गुर रामदास हर पै गयो हर वंश जगत जस संचर्यो सो कवन कहे श्री गुरु मोयो
3: देवपुरी में गयो आप परमेश्वर पायो हर सिंहासन

जो तुद पावे साई भलीकार तु सदा सलामत निरंकार मूत पलीती कपड़ होए दे साबून लईऐ ओह धोए पुन्नी पापी आखण नाहीं कर कर करना।

0: प्रकाश वाहेगुरु जी की फतेह। पातशाही दशमी कबियो बाज बेनती चौपाई, हमरी करो हाथ दे रक्षा, पूर्ण हो चित की इच्छा।
1: चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रीत पारा,
0: हमरे दस बह तुम काबो, आप हादे मोए बचावो,
1: सुखी बसे मोरो परिवारा, सेवक सिख सब करतारा,
0: मोर छानिज करते करिए, सब बैरन को आज से करिए,
1: पूर्ण होए हमारी आशा, तोर भजन की रहे प्यासा,
0: तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्या, जो बचाओ सो तुम ते पाओ,
1: सेवक सिख हमारे तारिया, चुन चुन सत्र हमारे मारिया,
0: आप हाथे मुझे उबरिए, मरण काल का त्रास मरिए,
1: पूजो सदा हमारे बच्चा, श्री सुजो करियो रक्षा,
0: रखनारे साहिब संत साहिब प्यारे,
1: दीन बंदुष्टन के हंता, तुम ओ प्री चतुर्दश कंता,
0: काल पाए ब्रह्मा भवतरा, काल पाए शिव जी अवतरा,
1: काल पाए कर विष्णु प्रकाशा, सकल काल

0: हनुमान तमाम कछ भेद न जानता।
1: महादेव को कह सदा शिव निरंकार का चिन्हत न पिव।
0: आप अपनी बुध है जेते पन्नत पिन पिन तो तेती।
1: तुमरा लखा न जाए पसारा कै बिन सजा प्रथम संसारा।
0: कै रूप अनूप स्वरूप रक्त पे और आफ गई पुपा।
1: अंड जे रस से तस्कीनी उत्पुच खान बहु रच दीनी।
0: कौ फूल राजा हुए बैठा कौ सिमट पर संकिर गठा।
1: सगरी सृष्टि खाए चंबव आ जुगा स्वरूप से अंबव।
0: मेरी तुम करो सिखो बाण सिख संगरो।
1: दुष्टते उठवा तुटपाता सगल मलेश करो रण काता।
0: यस तुझ तब सर निपरे तिनके दुष्ट कित वै मरे।
1: उरक जमन पग परे त्यारे तिनके तुम संकट सब तारे।
0: जो कल को एक बार ते आये ताके काल निकट नहीं आया है।
1: रचा होए ताए सब काला दुष्ट अरिष्ट करे तत्काला।
0: कृपा दुष्ट अंजान हरो ताके ताप तनक मोहरो।
1: रिद्धि सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट छाछ सके न कोई।

0: करा पूर्ण सुब्राता
1: चपे
0: त्याला पूर्ण करा ग्रंथ काला
1: मन बाशत फल पावे सोई दुख नत से व्यापत कोई अड़ल
0: सुने गुंग जो आस रस ना पावे सुने मूर्छित लाज चतुरतावे
1: दुख दर्द पौ निकट ना तिनर के रहे हो जो या की एक बार चौपाई को कहे चौपाई
0: संबत 17 सहस्पनी जय अध

0: कर कहने
1: ए मन चंचला चतुराई किने न पाया
0: ना पर किने तो सम्मान मेरिया
1: ए माया मोहनी जे एक परम पुलाया कुर्बान कीता तिसे विटोचन मोह मिटा लाया
0: नानक मन चंचल तुझदा किने ना पाया
1: ए मन प्यारिया तू सदा सत संभाले
2: एहो कुटुंब जे तू देखदा चले नाही तेरा नाले
3: साथ तेरे चले नाही तिस नाल क्यों चितलाईए
2: ऐसा कम मूले ना कीचै जित अंत पछोताईए
3: सतगुरु का उपदेश सुन तू होवे तेरे नाले
2: कह नानक मन प्यारे तू सदा सच संभाले
3: अगम गुचरा तेरा अंत ना पाया
2: अंतो ना पाया किने तेरा अपना आप तू जाने
3: जी जन सब खे तेरा क्या को आख वखाणे
2: आखे तो वेखे सब तू है जिन जगत उपाया
3: कहे नानक तू सदा अगम है तेरा अंत ना पाया
2: सुर नर मुन जन अमृत खोज दे सो अमृत गुर ते पाया
3: पाया अमृत गुर कृपा कीनी सच्चा मन वसाया
2: जी जन सब तुद उपाय एक वेख परसन आया
3: लब लो अहंकार चुका सतगुरु भला पाया
2: कह नानक जिसनु आप दुठा तिन अमृत गुर ते पाया
3: भक्ता की चाल निराली भक्ता गेरी पिकम मार्ग चलना
2: लभ लोभ अहंकार तज तृष्णा बहुत नाही बोलना
3: हरियो तिकी वालो निकी एक मार्ग जाना
2: गुर प्रसादी जिनी आप तजया हर वासना।

0: माता के उदर में प्रतिपाल करे सो क्यों मनोविसारिये उसनो के पोहे न सकी जिसनो आपनी लिव लावे
1: अपनी लिव आपे लाए गुरमत सदा संभालिए
0: कहे नानक एवट दाता सो क्यों मनो विसारिये
1: जैसी अगन उदर में तैसी बाहर माया
0: माया अगन सब एको जे ही करते खेल रचाया
1: जाति पाणा का जमे आपन वार भला पाया
0: लिव छुड़की लगी तृष्णा माया अमर वरताया
1: ए माया जितर विसरे मोह उपजे पौ दूजा लाया
0: कहे नानक गुर प्रसादी जिना लिव लागी तिन्नी विचे माया पाया
1: हर आपो मुलक है मूल न पाया जाए
0: मूल न पाया जाए किसे विटे उड़ रहे लोग विलाए
1: ऐसा सतगुरु जे मिले तिसनो से सौंपिए विचों आप जाए
0: जिसदा ज्यो तिस मिल रहे हर वसे मन आए
1: हर आपो मुलक है पातना के नानक जिनार पले पाए हर रास मेरी मन बंजारा हर रास मेरी मन बंजारा सतगुरु ते रास जानी
2: हर हर नित जपो जियो लाहा खटियो दिहाड़ी।

चक्र चेहन अर बरन जात अर पात नहन जेहे रूप रंग अर रेख पेख को कहना सकत के हे अचल मूरत अनुभव प्रकाश अमितोज कहिजै कोट इंद्र इंद्राण साहि साहान गणिजै

ख्वार हुए सब मिलेंगे, ख्वार हुए सब मिलेंगे। बोले सोनिहाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।